0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या सांगली केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम प्रकाश किरण। लेखन केलं आहे अंजली पर्वते यांनी, श्लोक गायन आहे ऋषिकेश बोळस यांचं आणि निवेदन चित्र हंसनाळकर यांचं।
2: नवविधा भक्ती अनेकांनी अनेक ठिकाणी सांगितली आहे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं अशी 9 प्रकारची भक्ती भागवतात सांगितली। अध्यात्म रामायणात मात्र ही नवविधा भक्ती काही वेगळीच सांगितली आहे। इथे राम शबरीला उपदेश करताना सांगतात,

0: से बोल असोत
1: के मांजोळ बासरे
0: शतताऱ्यांची संतूर असो
1: की मंगल सनई
0: लावण्यमयी लावणी असो की भजनी ठेका आकाशवाणी अवश्य ऐका।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले

0: समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जनशक्ति मंत्री

0: आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
1: Every nation has a mission.
2: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
1: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
3: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भूटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भूटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी।

0: नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरणामुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, घोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भूटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता।

0: तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल,
4: कोई

0: best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये मेरी गुड़िया थी ना।
3: पर दादी
1: हाँ
3: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों कुछ समय पहले

0: सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है, न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है, ये सब कैसे हुआ?
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अवहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके

0: जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री। सर
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़ी उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?

0: किया और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे. तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुड आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर.
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं. देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं. ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर. सुझाव दो प्रकार के आते हैं. एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं. दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो. तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं. तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं. तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा. तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया. और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके. तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके. तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए.
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है. अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबी होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप.
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर. हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन.
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है. आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है. साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा. आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें. मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया. बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं. आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है. साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं. मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं. नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है. मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले. आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें. कई बार क्रिएटिव

एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मैंने

भी कई नई चीजें जोड़ी, ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट अब प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों

की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदुपत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्र

0: चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज करवें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाश

0: रवींद्र साठे आणि सहकलाकारांनी गायलेलं अबोली या चित्रपटातलं गीत आत्ता आपण ऐकलं. गीत लिहिलं होतं नाधो महानोर यांनी आणि संगीत दिलं होतं निशिकांत सदाफुले यांनी. आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. मध्यम लहरी 537.6 MHz तसंच 558 KHz. दुपारचा 1 वाजतो आहे. दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या हिंदीतल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें. उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है. श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है. श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं. उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है. श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया.
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है. बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े. धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे. एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई.

0: पाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धुलरो कुसुम के मैथिली भुए ने यह दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्ति करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया, जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. दुपारचे 2:15 होत आहेत. दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या हिंदीतल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया. कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला. प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की. कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है. नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता. भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा. उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे. राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं. वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा.
2: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी. हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे. दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे. यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे.
1: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं.
2: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं. मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं. हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश

0: में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति की कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
3: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरल की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के

0: दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आइए सुनते हैं नाटक रामानुजम, लेखक

0: कॉफी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वा मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देव वर्मन। फिल्म के पड़ोसन पसंद करने वाले श्रोता हमारे ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। येसुदास की आवाज में कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मनंत, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंजे डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना और इनके मित्रगण, गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम।

0: देखो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
1: All right, as you wish।
2: माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
2: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
2: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
0: ये आपने कैसे समझ लिया?
2: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
2: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
2: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
0: आप क्या चाहते हैं?
2: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
2: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
0: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
2: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
2: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
0: आप जरा भी संकोच न करें मेरी, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है।
2: मैं आगे बढ़ूं?
0: ओह श्योर।
2: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना?
2: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
0: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
2: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
0: फिर?
2: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
0: पर क्यों?
2: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
0: एक आइडिया।

0: यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
1: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रुक जाती है।
1: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
0: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
1: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
1: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
1: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
1: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
1: नाटक होता तो जरूर कर देता।
0: मतलब ये नाटक नहीं है?
1: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
0: आत्महत्या?
1: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
1: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
0: यानी कि?
1: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
0: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
0: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
0: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
0: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों से नादान थोड़ी हैं, तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
0: अरे इसमें क्या बोलना,
2: एक बार, बस एक बार कह देना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
0: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर।
2: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
0: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
0: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
0: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
0: ना,
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही है या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
0: मैं सब इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट इट कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
0: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
0: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
0: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
0: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you।
2: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
0: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
2: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
0: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना, ये झूठी जिद है।
0: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द हैं ना।
2: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
0: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
2: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
0: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
2: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
0: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
2: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
5: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं?
4: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
5: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बन नहीं गया।
4: ये साड़ी कब खरीदी?
5: कैसी लगती है?
4: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
5: ये तुम क्या कर रहे हो?
4: देखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में

0: हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़े झगड़े, लेकिन एक दूसरी की बात तो रखते ही है। जबकि आज के लिए तू ही एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है, इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
1: बस बस बस एक मिनट ये टेबल लो।
0: टेबल किस लिए?
1: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
0: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती।
1: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
0: आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
1: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आते होंगे।
0: नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
1: क्या?
0: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू।
1: हे भगवान, इनकी सभी विनोद कैसे सवार हो गया? छोड़, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
0: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
1: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
0: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
1: इतने जोर से ना कहो।
0: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
1: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम तो उन्हें फोन करने वाले थे ना?
0: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं?
1: छोड़ो मुझे बहुत से काम है।
0: चुप रहो, मैं कहता हूँ, मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: कहूँ तो मैं मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
0: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
1: तुम तो कितने हो?
0: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
1: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धि मतलब ही पति के साथ शादी करने का, घर से चलाने का मतलब यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
0: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा छप्पर देता हूँ मैं।
1: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाओ।
0: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
1: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। मारो मुझे।
0: रेखा,
1: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
0: मर गया। अब तो तुम चाचा जी होंगे। चुप हो जाओ। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही मत, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, है ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ। आइए चाचा जी। कैसी है चाचा जी?
2: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हैं?
3: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी?
1: मैं
3: कौन बोल रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
2: हमें देखकर?
0: हाँ,
2: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
3: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
0: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही बिना वजह
2: किसी को रोना नहीं आता, समझे?
3: सीमाए तुम्हारी चाची के।
2: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
3: और रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
0: अब कुछ नहीं। ओ भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं, जाओ।
1: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
2: मनोहर बहू को क्या शिकायत है?
0: कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है, बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
3: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
0: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
3: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
0: नहीं, गलत मत समझिए, थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: तुम पागल वागल तो नहीं हुए? ये कहने की कोई वजह

0: लीजिए लीजिए पानी।
1: अब इसकी बहन की बेटी लीना, लीना
2: कौन? प्राण जीवन की बेटी।
1: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा, वही होगा।
2: क्या कहा तुमने?
1: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
3: ये लीना वाली बात क्या है?
1: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
2: अब भी लड़ रहे हैं क्या?
1: कमरा खुलने से मालूम होगा। मैं खोल कर देखा।
3: नहीं नहीं रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हो तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
2: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
1: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
3: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने?
1: हैं कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कमाल है।
2: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई। चलो रेखा बेटी
0: जी,
2: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ।
1: हाँ, मेरे लिए भी ना भूलना है।
3: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
1: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
2: ये बात तो सच कही।
3: क्यों, तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
2: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। ये लो पैसे लो।
1: नहीं नहीं नहीं चाचा जी, आप ही क्या कर रहे हैं?
3: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
1: अब लेकिन
3: अभी कुछ मत कहो।
1: आप भी चाची। अरे चाची की चप्पल तू ही आ जा मेरे।
3: ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
2: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा।
3: पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
2: ना समझी है और क्या, नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
3: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
2: अरे जवान है, कभी कभी मजाक भी सोचता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
3: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
2: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
3: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
2: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूं तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
3: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
2: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
0: नमस्ते चाचा जी।
2: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
0: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
2: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
0: हाँ जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला कोई नहीं।
2: अरे तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
0: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
2: हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
0: आई डोंट बिलीव।
2: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
2: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
3: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
2: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
3: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँ?
2: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
3: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
2: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
3: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
2: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
3: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
2: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
3: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
2: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
3: तुम क्या अंधे थे?
2: अंधा नहीं, उदार था। उदार
3: उदार नहीं,

0: उधार थे उधार। मेरे आने के बाद ही घर में दो वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
1: चाची जी प्लीज।
0: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
1: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
0: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
2: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
0: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
1: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
3: लीना
0: क्या है?
3: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
4: मैंने तो केवल लकड़ी लाई थी, आग तो तुम ही नहीं सुलगाई।
5: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
4: अंदर है।
5: क्यों?
3: हम जैसा ही हाल है।
5: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है?
3: हाँ।
5: वाह मजा आ गया।
4: आपको इसमें क्या मजा आया?
5: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया।
4: मौसा जी सचमुच जोकर है।
3: तुम्हारे मौसा जी हैं?
4: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
3: पसंद? ओ ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली? ऑफ व्हाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो ऑफ व्हाइट कलर ही मिलेगा ना?
1: हाँ हाउ नाइस।
0: अच्छा अच्छा कल कब आओ? लीना 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: हाँ यस आई एम फ्री।
0: हाँ हेलो हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना एट लास्ट वी गॉट इट,
1: थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया
1: क्या?
0: अकेली मैंने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो इन लोगों का निपट गया।
1: मूर्ख है लीना। अरे मौसी तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा। मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है, वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई। अरे इस पगड़ी ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: चाची जी चाचा जल्दी है। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: चलो सोफे से नीचे उतरो, लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: डियर एक बार नहीं दो बार।
4: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
3: चाचा जी 2 बार मैं जीत गया
0: और मैं भी 2 बार जीत गया।
3: चाची हमारा निपट गया। तो जीत छोड़ दो, एक बार मुझे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
5: जहाँ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डीगे हाँक रहे थे, इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
4: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
5: तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
4: नादान नहीं तुम तो अकल की दुश्मन हो, हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो। मर गया चाचा।
1: अरे ये क्या कर रहे हैं?
4: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये 2 कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
5: तुम कुछ भी कह लो मैं टस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया? क्या हो गया इनको? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या हो गया? मनोहर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो
4: डॉक्टर। रहने दो,
1: क्या हो गया?
4: सिर्फ एक बार।

0: बार मेरे लिए कह दो।
1: क्या कह रहे
0: हो? मैं सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, मुझसे भूल हो गई।
0: एक बार कह दो,
1: मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
2: खाओ मेरी कजन।
1: तुम्हारी? अच्छा, इसका मतलब तुमने
3: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
3: बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
4: ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, खोल दो पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही मत, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। रुमाल से आप सब पूछ डालो। आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ी लाई थी, आग तो तुम ही नहीं सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ हाँ व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं जो आज तक तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जहाँ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
4: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
7: आना चाहिए।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
8: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
9: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
8: बुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
9: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
8: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
9: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
8: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
9: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: कुछ दिल ने कहा
9: एक लड़की,
10: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है।
9: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था,
10: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावनी की हवा चले।
9: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
10: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया

0: ज्यादा है, ये तो रुकने ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माय ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जब मैं वापस से लौट के आया, दो तीन साल यहां का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है, उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
2: ये एनएसजी से लौटने के बाद
1: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया।
2: अच्छा।
1: मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था। वो बर्निंग इश्यू है।
2: जी बिल्कुल।
1: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यिल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है, उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है। वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका फलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था, उत्तम

0: तुपे एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
1: वाह वाह।
0: 10 अक्टूबर 1987।
1: गजब।
0: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
1: जी जी।
0: तो वहां पर ये पहला शो हो गया और वहां पर कारण जी से लेके अशोक वाजपेयी से लेके ऑल हुज हू ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे और वो पहला ही शो हमारी पहली रंत्रू थी।
1: ओहो।
0: पर वो जो गजब का शो हुआ है उसके बाद हमने 400 साढ़े 400 पौने 500 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
1: सयाजी शिंदे थे।
0: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेला, ये सारे लोग थे।
1: वाह।
0: भारत तांडेल। तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी का जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती। तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलन समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसा जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा, नारायण सुर्वे देखा, पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा
1: जी।
0: या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसा ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आई है तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में
1: जी,
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है। एनीवेज इन टीयर्स
1: जी।
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी थे, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: पुल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजुअली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पुल देशपांडे, क्या कहते हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बना,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है
1: जी।
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे, उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया, और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से।

0: झुलवा, झुलवा में अलग था। जानी मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो एनएसडी रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक
0: रही ज्यादा था? मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए। अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो। तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक जुमदेवार ऐसे नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया। और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर दो चार पांच दस नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले, नहीं यार उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, या एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: है।
1: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
2: जी,
1: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
2: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
1: जी,
2: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें

0: काम करना था
1: जी,
0: वो देहाती लोग थे वहां के
1: जी जी बिल्कुल,
0: खासकर तैयम मुड़िए टू और पड़ेनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे, उनकी अपनी एक बोली डायलेक्ट होती थी मलयालम की, तो इनसे कैसे निपटाया जाए। पहले चार महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
1: जी,
0: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो जी, ऐसा जी। लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से, तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक, एक शब्द या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी दो तीन वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए, और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो दो रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था, तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार चार चार पांच पांच दस दस सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर, और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी, तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे, और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया, और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए, हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे, तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए, तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई, तो ये सब पतीले बर्तन समेटने लगा, तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है, तो उसने कहा वो पोई,
1: मतलब गई
0: वो चली गई अभी, अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। और इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से, तो अब क्या किया जाए, कहां रुके, रात को 9:30 बज गया और गांव में देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है, अब जाएं तो कहां गए। तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था, केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहां, यहां तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते, वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए, तब 11:30 बज रहे थे,
1: और चावल के खेत तो गीले
0: होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं, जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह,
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स,
1: जी जी,
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकल

0: सो गए होंगे
1: जी,
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला है, सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई
1: बस पोई।
0: हाँ। तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊ कॉफी बनाऊ। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, एक घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई, मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने एक सवा डेढ़ घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा, मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है यहाँ, सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया
1: रेत
0: के ऊपर। पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: हाँ, और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची और हम ऐसा कैसा ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए बस में जाए जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा,
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और ये ऐसा अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं, यही बात है। वो
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूं जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहां आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूं। तो मैं यहां जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा, उसके ऊपर हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
1: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
1: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
1: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है तो। खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां

0: सिटीजनशिप है, वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले, यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इंप्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से। उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी, उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने। और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहां आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहां पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमने क्या काम मिल रहा है तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: केंद्र बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और एक डेढ़ घंटे के बाद वो क्लास रुक गई, तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा छिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो। और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्र हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: वो क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा या जैसे भी, हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे।

0: पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी तो मैं तो चला गया कहां रविंद्र नाट्य मंदिर और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो तो एक दो घंटा हो गया तीन घंटा हो गया उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए
1: ओके
0: तो मैं वहां पहुंचा वो गौरी केंद्रे थी मतलब गौरी पढ़ते थी तब तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया मैंने कहा क्या किया नहीं आप मुझे बोलने वाले थे मुझे साथ में ले जाने वाले थे और मैंने कहा मैं भूल गया
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूं।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का।
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाए। तो मेरा जो साइन है वो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वरती उतारते होंगे, लेकिन

0: बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहां बर्थडे होता है उसको कहां मालूम है। हाँ मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, चरित्र रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है, वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का जखड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाटना बोलते हैं, वो तिकाटना कासराबर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता ज्योग्राफी कब कितना कहां ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी, इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी।
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूं ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी,
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूं एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो,
1: अरे भगवान
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माता जी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ,
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे,
1: अरे कैसे,
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूं।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूं नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आपके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूं सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे।

0: देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर वन में।
1: ऐसा क्यों,
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है एक महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का एक महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहां होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर वन में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां एक घंटा इंतजार कर रहे, दो घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, दो तीन घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, यहां इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आया ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हां कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणा ही थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहां नहीं है, वहां देखो कहीं आया वो। तो वहां पहुंचे हम तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहां है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई दो मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिता जी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रुपीज
1: जी जी,
0: वो रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुमका खेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहां जाओगे, मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहां सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहां आइए, हम यहां पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में

0: थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सांगली केंद्राचं प्रसारण आपण ऐकत आहात। संध्याकाळचे 6:05 झाले तथा प्रसारित करीत आहोत लोकसंगीत। आज आपण ऐकणार आहात शिवाजी बापू गोंधळी आणि सहकारी यांनी सादर केलेली गोंधळी गीतं।

0: आदौ मुख्यवार्ताः। भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं, उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः, 78 शतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति, नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति। मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषय सामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः, अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम्। नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68+700 सम्प्राप्ता, प्रायः 25% जनाः अद्यापि विलुप्ताः। भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4th विमानं नेपालाय प्रेषितम्। अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्चशिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30+2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यत् हि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः। श्रीमोदी अवोचत् यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः, अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी संतोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री न्यवेदयत यत् मादक द्रव्य व्यसनं केवलं एकं जनं न ग्रसते, अपि तु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते। सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादक विरोधी जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादक द्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकल

0: जाने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 44% महिलाः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट इत्यस्ति, येन 88 देशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेष क्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुंबई नगरस्थेन कृष्ण शेषाद्री इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
0: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशन्स और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
1: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70% संवृत्ता। अद्यापि मृत वपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2,500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायां अद्य भारतीय महिला दलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।
2: मधुम लहरी 239.8 मीटर्स अर्थात 1251 किलो हर्ट्स वर, FM वाहिनीच्या 100.6 मेगा हर्ट्स वर, तसंच न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ऍप वर आकाशवाणीचं हे सांगली केंद्र आहे। संध्याकाळचे 6:30 झाले, आता प्रसारित करीत आहोत

0: मुंबईतील इतिहासप्रेमी अभियंता कृष्णा शेषाद्री यांच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधून त्यांच्या कार्याचा परिचय श्रोत्यांना करून दिला. हा संवाद सर्वांनी मुळातून ऐकायला हवा. या संवादामध्ये कृष्णा शेषाद्री यांनी आपण नेमकं कसं काम करतो याची माहिती श्रोत्यांना दिली. आजच्या काळात भारताच्या इतिहासातल्या कोणत्या व्यक्तींबरोबर संवाद साधायला आवडेल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रश्नावर इतिहासप्रेमी कृष्णा शेषाद्री यांनी अतिशय रोचक आणि प्रेरणादायी उत्तर दिलं ते आपण इथं ऐकूया.
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे. तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले हजार या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके. तो वो मुझे उनसे जानना है. और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर. उनका नाम है हेमू. तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं. हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे. उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया. और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती. तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी में जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर. और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी. तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी. तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है. इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए. और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे. तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे. तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर.
0: श्रोते हो, समाजातील अनेक प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे युवा वर्गामध्ये अंमली पदार्थांचं वाढतं सेवन. यामुळे अख्खी पिढी उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण होण्याआधीच जनजागृती बरोबरच सर्व स्तरांवर उपाययोजना करण्याची गरज सरकारला वाटते. या मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन करताना प्रधानमंत्री म्हणाले,
2: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया. बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं. आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है. साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं. मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं. नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो. हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है. मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले. आप अपने प्रयासों को है.

0: हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें।
1: श्रोते हो, देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक लहान मोठे व्यवसाय महिला करताना दिसतात। अशा लक्षावधी महिलांना पीएम स्वनिधी योजना वरदान बनली आहे। याविषयी प्रधानमंत्र्यांनी काही महिला व्यावसायिकांची उदाहरणं देऊन माहिती सामायिक केली। याबाबत ते म्हणाले,
0: हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: श्रोते हो, आजच्या मन की बात मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशातल्या कन्यांच्या स्वप्नांना नव्या अवकाशात झेपावण्यासाठी मजबूत पंख देण्याचं काम सरकार करत असल्याची माहिती दिली। या नव्या मिशन शक्ती सॅट विषयी त्यांनी सांगितलं,
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी।
1: श्रोते हो, आजच्या भागात नागालँडमधल्या वेसानुपुरो यांनी केलेल्या फुलशेतीचा रंजक प्रवास प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितला। तसंच ओडिशातील धोडरो कुसुम गावातल्या महिलांनी एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंत असा मंत्र जपत घडवून आणलेल्या परिवर्तनाची गाथा सांगितली। तर स्वातंत्र्य दिनाच्या काळात देशभक्तीच्या रंगानं न्हाऊन निघालेल्या आपल्या भारतभूमीचं शब्दशिल्प त्यांनी साकारलं। उत्तर प्रदेशातलं रामपूर गाव असो की भोलेनाथाच्या भक्तीमध्ये तल्लीन होणारे बाबा अमरनाथचे यात्रेकरू असोत, सगळीकडे स्वच्छता कशी राखली जाईल असा विचार

0: बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्र वृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध

0: समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIR